मूर्छित अवस्था में देखकर श्री राम भगत श्री हनुमान जी बालाजी महाराज को याद करते हैं और किस तरीके से बालाजी महाराज से क्या आदेश देते हैं और दुख की घड़ी में बालाजी महाराज को याद करते हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: बंद करो ये गाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां? चला जाऊं कैसे? चला जाऊं? ये तो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राज नर्तकी थी और मैं यहाँ का राज गायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ ज्यादा आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो,

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: बरसों बाद ढूंढने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: मोनिका,
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: हाय, हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन खान, आ चुका हूं लेकर आज का ये प्यारा शो है स्पेशल स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल। तो आप सभी का वेलकम करते हुए सबसे पहले मेरे पसंद गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

बिल्कुल रईस ज्यादा, मैं हूँ दिल का रईस ज्यादा, और ये गाना सिर्फ मेरे लिए बना है, क्यों है ना। वैसे गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद करते हैं आपको मेरी पसंद जरूर पसंद आई होगी। वैसे बहुत से दो जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। आज सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफराज जी, सरफू भाई साउथ अफ्रीका से वेलकम है, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, एंड बिट्टू कुमार जी हैं, वेलकम है बिट्टू कुमार जी आपका भी, और नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं नाहिद अंसारी जी। और हमारे ये मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत भाई मुबारक को, आप जुड़ गए, बहुत बहुत अच्छा लगता है, आपका नाम बहुत अच्छा है। और सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं सरायकेला झारखंड से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सुनीता गोप जी। और मिसाल अंगद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मिसाल अंगद जी का भी। काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सीतामढ़ी बिहार से। हमारे असलम राणा जी जुड़ चुके हैं हापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं निम्बोरा महाराष्ट्र से, बहुत बहुत वेलकम है। बाबूलाल अंजाना जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और आरिफ सिंधी जी गांधीनगर गुजरात से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और साथ ही साथ यानी कि प्रकाश दोने जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी प्रकाश दोने जी। और संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और दिगंबर जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं दिगंबर सिंह जी। और एमडी नाजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी नाजिम जी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और आत्माराम पाटिल जी वेलकम है आपका भी आत्माराम पाटिल जी। साथ ही साथ सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और एमडी फैज आलम जी

चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और आज और हाँ बता दूं कि आज हमारे एमडी फैज आलम जी के साहबजादे, क्या नाम था उनका, मैं तो हाँ एमडी यानी कि जफर जी का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल। और आज आपके लिए 11 बजे से स्पेशल शो था, यानी कि सॉन्ग रिक्वेस्ट स्पेशल शो था, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम सलाम जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से। अमीना खान जी जुड़ चुके हैं, ये भी बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं। और हुकुम चंद जांगड़ जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और हमारी नंदनी माँ जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम है नंदनी माँ जी। राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं ना, सभी का वेलकम करते हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, तो सबसे पहले जो मैं प्रोग्राम का आगाज जिस गाने से करना चाहता हूँ, वो तो भाई क्या ही कहूँ, ये गाना मुझे बेहद पसंद है, इतना पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। और इस गाने को लेकर आए हुए हैं हमारे सर्वजीत सेठी जी, सुनना चाहते हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है, इंजॉय द ट्रिप।

0: वेलकम बैक। और आज इतने सारे गाने हैं कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा। ओके दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास फीडबैक आया हुआ है और जुड़ चुके हैं यहाँ पे नंदलाल यादव जी गाजीपुर यूपी से, कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी, और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, हमेशा की तरह सबसे पहला फीडबैक इन्हीं का आता है। बिल्कुल मैं बना ले लूंगा भाई, कभी नजर ना लगे।
1: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते।
1: और बहुत अच्छा गाना सुनाए बरसात का मौसम, सर्वित सेट्टी जी और MD फैज आलम जी का लड़का का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ईश्वर को खूब खुश रखे, आबाद रखे, पापा का नाम रोशन करे।
0: बिल्कुल धन्यवाद देते हैं आपके आशीर्वाद के लिए। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं सर्वजीत सेट्टी जी की पसंद सुपर हिट, लाजवाब लगी है बिल्कुल। और और अमीरा खान जी लिखते हैं कि वाओ बहुत ही प्यारा गाना है जी। नाही जी जो यहाँ लिखते हैं कि वाओ सुपर अमेजिंग पसंद के लिए थैंक यू सो मच, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। अजय भागा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और गोविंदा खंडाटे जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। बाबूलाल ये विभूति भूषण शरण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है विभूति भूषण शरण जी, बहुत लंबा नाम है भाई आपका, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और फैज जी क्या कहते हैं सुनते हैं
2: जी। अस्सलामुअलैकुम, सरोजीत सेट्टी जी की पसंद नंबर वन है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने जो प्रोग्राम चलाया है 11 बजे से, उसको जिस ढंग से सजाया था बहुत खूबसूरत लगा,
0: थैंक यू,
2: बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़े से हॉल में बैठ के हम गाना का आनंद ले रहे हैं।
0: अच्छा।
2: इस ढंग से मतलब उसको सजाए थे आप, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो MD फैज आलम मोहिउद्दीन नगर,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी भाई, आपको मेरी मेहनत सफल हो गई। ओके राधा कृष्ण को देखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और मिसाल अंगद जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं ना।
3: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद, और कार्यक्रम के आगाज तो बहुत शानदार हो गया है अमन सर जी। आपका जो गाना आपने सुनवाया, आपका फेवरेट गाना, तो अमन सर जी ये गाना मुझे बहुत बहुत पसंद आया। ये गाना मैंने भी आपके माध्यम से पहली बार सुना, तो मुझे ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज के सभी गाने बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो गाना आपने सुनवाया, जिस भाई साहब की ये पसंद होगी, तो मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उनका पसंदीदा अंदाज बहुत अच्छा था और गाना भी बहुत अच्छा है, धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और इसी बात पर अगला जो फीडबैक है ये क्या है भाई, गजन सुलकार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, सभी को नमस्ते नमस्कार कह रहे हैं। जाकिर खान लिखते हैं कि वेरी वेरी स्वीट चॉइस है, थैंक यू सो मच, इंक्लूडिंग द सुपर सॉन्ग, ओके थैंक यू सो मच। और यहाँ पे दिगंबर जी क्या कहते हैं,
4: हेलो अमन सर जी,
0: जी
4: आज का सॉन्ग शुरू का स्टार्ट का सुपर सॉन्ग, लाजवाब सुनकर मजा आ गया।
0: इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे प्रमोद कुमार जी का है, और प्रमोद कुमार जी आज क्या सुनना चाहते हैं, लिखते हैं कि अमन सर जी को प्यार भरा नमस्कार, मुझे आज एक सॉन्ग सुनना है जिसका लिंक मैंने भेज दिया है। और सबसे पहले आपको और रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले जितने भी दीवाने दीवानियां हैं जो सुन रहे हैं, सभी के लिए मेरा गाना डेडिकेट है। और सच में आपका गाना भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पहली बार सुनने वाला हूँ। इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल। और यहाँ पे रवि महाड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रवि महाड़े जी। और आर्यवंशिका जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आर्यवंशिका और मैं भी कार्यक्रम को जो सुन रही हूँ, कार्यक्रम बहुत बेहतरीन चल रहा है आर्यवंशी, आपकी प्रस्तुति का क्या ही कहना। और इसके साथ साथ आज MD जफर जी का भी जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बधाइयां देना चाहूंगी। MD जफर जी यानी कि MD फैज़ल जी के सुपुत्र का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। आप जियो हजारों साल और दिन हो 50,000, 50,000 एक करोड़ बहुत सारे अनलिमिटेड दिन हो, और आप खुशियों से अपनी जिंदगी को जियो, और ये साल भी आपके लिए बहुत खुश रह जाए, और अपने पापा का नाम आप रोशन करो और ऐसे ही ऊंचाइयों तक पहुंचते रहो। बस यही कहूंगी, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मी एंड रेडियो हॉटस्टार की पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बधाइयां। हैप्पी बर्थडे।
0: ओके, थैंक यू सो मच आपका भी। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि धन्यवाद भाई प्रमोद जी। और गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय दोस्त प्रमोद जी की पसंद मुझे बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिए उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का आगाज बहुत ही शानदार हुआ है, आपका ओपनिंग सॉन्ग और प्रमोद जी की पसंद का गीत चल रहा है, सभी गीत शानदार चल रहे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से,
0: धन्यवाद देते हैं आपको। और अच्छा, यहाँ तो जोरों की बारिश शुरू हो चुकी है। अच्छा, आपके यहाँ जोरों की बारिश शुरू हो चुकी है, यहाँ तो बारिश अभी नहीं हो रही है। बिल्कुल आज का मौसम बहुत अच्छा हुआ है आज का यहाँ पे। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भाई। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा ये नगमा है। और अभी हमारे लिखते हैं कि बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग हमारे परम मित्र प्रमोद कुमार जी का, और पहली बार मैं सुन रहा हूँ, गाना मुझे अच्छा लगा है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ऐसे ऐसे गाने। और अभिभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि मेरा नाम लेने के लिए धन्यवाद जी। भाई हमको तो भाई नाम लेना ही है, चाहे वो आपका नाम कितना लंबा क्यों ना हो, लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो हम सुनील कुमार जी का प्ले करने वाला हूँ, दीवाना मैं तेरा दीवाना। इंजॉय कीजिए।

और यहाँ पे अमीना खान जी शॉर्ट आउट में लिखती है कि जफर इमाम जी को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह आपको दोनों जहां की खुशियां अता करे, आमीन। बहुत ही प्यारा मैसेज आपने लिखा है। और अजय भगत लिखते हैं, अमन जी आपके जाने के टाइम बारिश हो गया। अच्छा भाई ऐसा मत कीजिए, वैसे मुझे भींग कर जाने पड़ेगी और अब तो आदत ही हो चुकी है भींग कर जाने की। और गजानंद जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुनील कुमार जी को। और नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर च्वाइस भाई सुनील जी, थैंक यू सो मच। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन नगमा है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, ओके अगला जो डिमांड है वो हमारे गजानन ग्रुप जी का है। और गजानन जी ग्रुप क्या सुनवाना चाहते हैं सुनिए, एंजॉय कीजिए, सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं।

0: बिल्कुल कागज कलम दबात ला भाई, लिख दूं तेरे नाम करूं। और फीडबैक भी आया हुआ है मेरे पास बहुत सारा। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना चल रहा है, सुपर सॉन्ग चल रहा है। और अब प्रकाश क्या नाम, दोने जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं लाजवाब सॉन्ग है जी। और गजानंद जी लिखते हैं गाली अम्मा जी को व्यापार नमस्कार है, हम सभी साथियों को गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और फीडबैक
1: वाओ, सुपर डुएट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एमडी फैज आलम मोहिद्दीन नगर।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और सहिता सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, लिखते हैं कि हम फिल्म का शानदार नगमा, मजा आ गया। और राम कुमार मिस्त्री जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं कि कागज कलम दबातला सुनकर दिल खुश हो गया, दिल गदगद हो गया। अच्छा ओके। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि गजानंद जी के ग्रुप की पसंद सुपरहिट लगी है, लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसी यानी पैरिस डिमांड के लिए। और सुनील कुमार जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुनी लेते
2: हैं। अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आपने मेरी पसंद का गाना प्ले किया, आपका बहुत दिल से धन्यवाद। और सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए धन्यवाद। और आज एमडी नाजिम जी के सुपुत्र का जन्मदिन,
0: एमडी नाजिम जी नहीं एमडी फैज आलम जी की,
2: ने तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे उनको, धन्यवाद।
0: ओके कोई बात नहीं, चलिए होती है गलतियां छोटी मोटी। और माखन प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं कि आपने अच्छा गाना सुनवाया, नमस्कार। नमस्कार जी, वेलकम है आपका भी। और ये फीडबैक क्या कहते हैं।
3: हेलो अमन सर,
0: बोलिए।
3: मैं फिर एक बार मिसाल अंगद, हाँ, हाँ, और अभी जो गाना आपने सुनवाया हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी का ग्रुप का, तो उनके गाने में मुझे याद किया गजानन सालोकार जी ने, तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और उनकी पसंद बहुत शानदार है, और अमन सर जी आपने भी बहुत अच्छा गाना गाया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और इसी बात के लिए नहीं जी लिखती हैं कि गजानन गुरु की डिमांड बहुत ही लाजवाब थी, सुपर। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहा, जाने क्या कहा। नहीं, मेरी आवाज मुझे ही, आपने तो पूरा यानी कि 5 मिनट का रिकॉर्डिंग ही भेज दिया भाई, ऐसा मत कीजिए प्लीज। और ये फीडबैक
4: गजानन जी ग्रुप के सभी दोस्तों की मिली जुली पसंद का गीत बहुत ही शानदार लगा, और एमडी फैज आलम जी के सपुत्र एमडी जफर जी का जन्मदिन है, तो मेरे परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।
0: बिल्कुल,
4: तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरवजीत सेठी फाजिल
0: जी, जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और रवि मोहर जी क्या करते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
5: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग हमारे परम मित्र गजानन जी के ग्रुप का, मजा आ गया गाने में।

0: करूं। सुपर लाजवाब सॉन्ग और गाने में याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके जी, और नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है बिल्कुल, और अशोक कुमार जी लिखते हैं कि 1991 के पैदान नंबर 15 पर बजा था सर ये गाना, और हमारे मित्र को धन्यवाद देते हैं इस बेहतरीन पसंद के लिए। इसी बात पर अगला जो अच्छा, और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त गजानन ग्रुप जी की फरमाइश बहुत अच्छी लगी है। इसी बात पर अगला जो डिमांड अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट आउट भी है दो, जाकिर खान जी लिखते हैं कि एमडी जफर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबूलाल अंजाना जी लिखते हैं कि जफर जी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, इसी बात पर अगला जो डिमांड है, खान अमीना जी यानी अमीना खान जी का फिल्म चुपके चुपके से वो प्यारा सा नगमा है जो मुझे बहुत पसंद आने वाला है। एंजॉय कीजिए इस गाने को। और ये सभी को डेडिकेट करना चाहती हैं, मुझे सभी को।

0: बिल्कुल आया रे, ये दिल तुम पे आया है, ओ सनम ओ सनम ओ सनम। और ये फीडबैक भी आ गया भाई, सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, गजानंद सुलोकर जी का पूरा ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। अमीना खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको भी धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू सो मच सर्वेज भगत जी। गजानंद जी लिखते हैं, अमीना खान जी की पसंद मुझे लाजवाब, बेहतरीन, सुनकर आनंद आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने हमारी फरमाइश को प्ले किया था, थैंक यू सो मच आपका भी। अमीना जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच अमन खान जी, आपने आपने मेरा गाना प्ले किया, ओके थैंक यू सो मच। और एस खानम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं एस खानम जी। और साथ ही साथ पर क्या नाम है, राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर एक और डिमांड आ गया है बहुत अभी अभी, और इसे भेजा है रश्मि जी ने, और लिखती है कि दिल में बसा के पलकों पे उठा के, ऐसा कुछ है, मैं कुछ भूल रहा हूँ इसका लिरिक्स, कोई बात नहीं मुझे मिल जाएगा। और ये फिल्म जब प्यार किसी से होता है, यस जब प्यार किसी से होता है तो ऐसा ही होता है, दिल में बस जाता है वो। और ये सुनना चाहती हैं, लिखती हैं कि मैं पहली बार आपके प्रोग्राम से जुड़ी हूं और अच्छा लग रहा है, आज मेरा जन्मदिन भी है, ओ माय गॉड। तो आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल, और आपका तो गाना तब तो हर हाल में बजने ही वाला है, एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी बहुत सारे हुए हैं। हमें बिट्टू कुमार लिख देंगे झक्कास गाना, वाह मजा गया मजा गया मजा गया। और ये इस खानम जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है, अब किस सॉन्ग के बारे में बात करें, इससे या पहले वाले की? मेरे ख्याल से आपने पहले वाले के ही लिए कहा होगा, अमीना खान जी का। और अमीना खान जी लिखते हैं कि फीडबैक देने वाले दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: इतना प्यारा ड्यूट का डिमांड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एमडी फैज आलम मुहिद्दीन नगर।
0: ओके जी, और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं रश्मि जी की पसंद बेमिसाल, और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। जी बिल्कुल। और हमारे माखन प्रजापति जी लिखते हैं कि गाना आपने अच्छा सुनाया, अच्छा अच्छा लगा और मजा आ गया। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां रश्मि जी। ओके जी, इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो गजानन सोलोकार जी का है। और गजानन सोलोकार जी, इंजॉय कीजिए अपने प्यारे से गाने के, आ जा याद सताए तेरे नींद चुराए।

0: वेलकम बैक और फीडबैक बहुत सारे हुए हैं। एमडी फैजली चाहिए जी लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं, बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और गजानन सुरकार लिखते हैं कि हमारे दोस्त रवि मुखर्जी मिशालंगा जी का फीडबैक बहुत अच्छा लगा, बाबूलाल अंगानी सभी का। और नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर वंडरफुल चॉइस, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दत्ता करम जी को, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: वाह अमन सर जी क्या शानदार गाना आपने सुनवाया, वाकई गजानन सालोकार जी की पसंद बहुत लाजवाब है, मुझे ये गाना बहुत पसंद आया और ये मेरा फेवरेट गाने में से एक गाना है। तो आज गजानन सालोकार जी ने गाना सुनवाया तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, याद किया तो मैं फिर एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र।
0: ओके जी, और यहाँ पे माखन माखन प्रजापति जी लिखते वाह वाह वाह, एकदम मजा आ गया सुन के इस गाने को। और राम कुमार मिश्री जी लिखते कि यार सताए तेरे नीच रहे, अब दिल ना लगे दिलबर, ये सुनकर तो मजा ही आ गया। और आप जो गाते हैं ना उसमें चार चांद लग जाते हैं, आए हाय थैंक यू सो मच सर जी, आपका हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि ये सुपरहिट डिमांड के लिए थैंक यू। मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी मंगेश देशमुख जी। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है। और गजानन जी लिखते हैं कि यार सताए तेरे नीच चुराए वाला गाना मुझे बेहद ही लगा है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मीरा सिंह जी का है। और मीरा सिंह जी लिखती है कि तेरी सी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया, आपको और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ, तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए मीरा सिंह जी।

बिल्कुल तेरी इसी याद आप पे सनम, मुझको तो प्यार आया, बहुत प्यार आया, थोड़ा नहीं बेशुमार आया। एंड बाबूला जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट पसंद। और नाहिद जी लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि चांद खूबसूरत है, लिखती हैं कि लोग कहते हैं कि चांद खूबसूरत है और पर उन्हें अभी तक तो तेरा दीदार नहीं हुआ ना, इसीलिए इसी और तेरी अदा पर मुझको तो प्यार आया, ये गाना सुनकर तो दिल खुश हो गया है। अच्छा, और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि ये मीना सिंह जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू मीना जी। बिट्टू कुमार लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत नगमा है, थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि सुंदर बहुत खूबसूरत डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे एस खानम जी लिखते हैं कि मौका मिलेगा तो हम उन्हें भी हंसाएंगे। अच्छा, मौका मिलेगा तो हम उन्हें भी हंसाएंगे जिन्होंने मुझे रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत ही प्यारा गाना है। और तेरी इसी याद आप पे सनम, मुझको तो प्यारा है, जी बिल्कुल। और अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है, जी बहुत बहुत। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे किन्न दोस्त का, अशोक पाल जी का। अशोक पाल जी सुनना चाहते हैं ये नगमा, सभी दोस्तों।

और यहाँ पे शॉर्ट आउट में भी कुछ मैसेज आए हुए हैं। यहाँ पे फैज जी लिखते हैं कि रश्मि जी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और रवि मोहर जी लिखते हैं कि अपनी जफर जी और रश्मि जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गजानंद जी लिखते हैं कि अपनी जफर जी और रश्मि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। ओके जी, और यहाँ पे मोहन वाले लिखते हैं कि अमन सर जी मैं भी जुड़ गया हूँ, तो वेलकम है आपका भी मोहन नेवारे जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि अशोक पाल जी के पसंद लाजवाब लाजवाब लाजवाब। रवि मार लिखते हैं कि एमडी जफर जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, और जी आपने तो वहां भी भेज दिया है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अशोक पाल जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और नाई जी लिखते हैं कि वाओ सुपर ऑसम चॉइस, थैंक यू सो मच। और एमडी असलम राणा जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान मैं भी जुड़ा हूँ, जी जी वेलकम सलाम। और लिखते हैं कि आशिक आवारा मूवी का ये सॉन्ग दिले नादान बोला, दिल से शुक्रिया इस गाने को सुनवाने के लिए दोस्तों। आत्मराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी जितने भी सॉन्ग प्ले हुए हैं सभी बहुत अच्छा लगे, सभी को थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण को भी देखिए इसी पहले से डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और हमारी ये नंदनी मालिक थी कि सभी गाने एक से बढ़कर एक है, जी बिल्कुल। और ये विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि अमन जी आपके कार्यक्रम को ये पेश करने का अंदाज मुझे अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच सर। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार नगमा है। अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही थे, मतलब यानी कि प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच। ओके जी, और अगला जो डिमांड है वो हमारे जाकिर खान जी का है, और सभी दोस्तों को रेडी करना, जाकिर खान जी इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। सच में ये गाना तो दिल को छू गया भाई, कहाँ से लाए हैं जाकिर खान जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार फिर से। और अजय भगत जी लिखते हैं सुपर डिमांड जी, ये इसमें नो शक बिल्कुल। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अजय अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: जी जी जी। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं जी, वेलकम है, नमस्ते सभी को कह रहे हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि जाकिर जी की पसंद मुझे बहुत करी लगी है। और एस खानम जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग है, रब ने भेजा है तुम्हें मेरे लिए। बिल्कुल, ये गाना इतना प्यारा लगा मुझे, मैं क्या ही बताऊं। और नाहिद जी लिखते हैं कि अपनी कलम से लिखूं वो लफ्ज हो तुम, अपने दिमाग से सोचूं वो ख्याल हो तुम, अपनी दुआओं में मांगूं वो मन्नत हो तुम, और जिसे हम अपने दिल में रखते हैं वो चाहो।

तुम, वाह वाह वाह, क्या बात है। और मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अरुण मन्ना जी लिखते हैं कि मैं भी कार्यक्रम से जुड़ चुका हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत बहुत ही लाजवाब ये डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, धन्यवाद देते हैं। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही झकास ये नगमा है, दिल खुश हो गया इस गाने के लिए, धन्यवाद देते हैं भाई। और माखन माखन यानी प्रजापति जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और राम के जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड में सुनवा रहा हूँ आप सभी को, आज के जो भी गाने हैं ना, मैं एक स्टोरी नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अगला जो डिमांड है वो शाहिद अंसारी जी का, और शाहिद अंसारी जी इंजॉय

0: ये भी गाना मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अरिंद मेहता लिखते हैं कि अमन जी प्रोग्राम मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और रामकेश जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अरजय अमन सर जी,
0: जी जी
1: शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, और अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, तो अकबर खान जी अभी आप यानी कि कहाँ है लिखते हैं अमन जी, आज मैं वाराणसी से जोधपुर जा रहा हूँ और कल मेरे नेटवर्क नहीं चल रहा था इसीलिए थोड़ा प्रोग्राम सुना, तो अभी आपने कहा है, लेकिन मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी। अगर हो सके तो एक अपना फीडबैक जरूर मुझे दीजिए, मैंने आपसे कल भी कहा था लेकिन शायद कल आप सुन नहीं पाए होंगे, और ये फीडबैक सुनता हूँ।
2: थैंक यू सो मच सर सॉन्ग डिमांड पूरा करने के लिए, और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। 90s के शो में सभी दोस्तों के सॉन्ग एक से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं, थैंक यू सभी को। मैं जाकिर खान जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको इसी बात पर। और अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ गोविंदा खंडादत जी का। गोविंदा खंडादत जी, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं बहुत सारे, और राधा कृष्ण को भी की बहुत ही शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। मजा आ गया बाबूलाल जी लेते, गोविंदा खंडारे जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, और रंजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। रंजीत कुमार जी, माखन प्रजापति जी लिखते हैं कि भाभी ये गोविंदा खंडारे जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया है, और गोविंदा खंडारे जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले किया आपने, और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद मुझे बहुत पसंद आ रही है, और रामकेश जी लिखते हैं वाह क्या बात है आज के सभी गाने लाजवाब हैं, अगला गाना भी सुनिए ये भी लाजवाब ही मिलेगा, और इसीलिए कही हुई है काजल झक्का जी, क्या सुनवाती है काजल झक्का जी, काजल जी कहाँ है जी, ये जी
1: अरमानों की गिनती तो मुझे नहीं आती, अरमानों की गिनती तो मुझे नहीं आती, पर दिन का एक ख्याल आपसे कह दूं, पर दिन का एक ख्याल आपसे कह दूं, पानी की एक बूंद अगर प्यार बन जाए, पानी की एक बूंद अगर प्यार बन जाए, तो तोहफे में आपको सारा समुंदर दे दूं, तो तोहफे में आपको सारा समुंदर दे दूं। नमस्ते, गुड इवनिंग आपको, रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं काजल बोल रही हूँ सीतामढ़ी बिहार से, मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग मैं भेज दे रही हूँ, ये सॉन्ग मैं सुना दूंगी सबसे पहले मिठू मियाँ जी को, अमन जी आपको, और आपकी सुंदरता की मुगा जी को, वंशिका जी को, और जितने दीवानियाँ सुन रही हैं सभी को सुना दूंगी।
0: ओके, जरूर सुनवाएंगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि दिल की हर बात जमाने को बता देते हैं, दिल की हर बात जमाने को बता देते हैं, अपने दिल के हर राज से पर्दा उठा देते हैं, आप हमें चाहें या ना चाहें इसका कोई गिला नहीं, आप हमें चाहें या ना चाहें इसका हमें कोई गिला नहीं, हम जिसे चाहें उस पर तो जान लुटा देते हैं, उस पर तो जान लुटा देते हैं। एंजॉय कीजिए अपने गाने को, कि पंडित जी ने हाथ आपका देखा था नैनीताल में कि भोपाल में, कहाँ देखा था जरूर बताइएगा।

0: वेलकम बैक। बिल्कुल पंडित जी ने देखा होगा, लेकिन पंडित जी गायब हो गए। हम हमारे पंडित घर तोड़े, मतलब घर जोड़े जी, वो पता नहीं कहाँ गायब हुए हैं। कैसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंह। बाबूलाल जी लिखते हैं कि नंदलाल जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। नंदलाल जी लिखते हैं कि अमन जी धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और मोहन भाई लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद है, सभी दोस्तों का थैंक यू सो मच। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी को पसंद एकदम झक्कास लगी है, धन्यवाद देते हैं काजल झक्का जी को। और सर्विस भगत जी क्या कहते हैं ये भी सुनी लेते हैं।
1: और जय अमन सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत पंडित जी से हाथ दिखाते हैं। क्या बात है
0: जी,
1: पहले भी दिखाए थे, अभी भी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा गाना सुन, धन्यवाद।
0: लेकिन जो यानी कि पंडित जी के बातें नहीं मान रही है ना, इसलिए ये बात है। गजानंद जी लिखते हैं कि काजल झका जी का पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और ये क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं।
2: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, अपने प्यारी रसिक श्रोता काजल झा जी, इनकी पसंद बहुत ही ब्यूटीफुल लगी, दिल खुश हो गया। शुक्रिया इसे साथी को, मैं आत्माराम पाटिल लिया बुलडाना महाराष्ट्र से, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और अकबर खान जी का फाइनली फीडबैक आ ही गया, सुनते हैं क्या कहते हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम अमन।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: कल आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू।
3: जिस तरह से आप प्रोग्राम में बात करते हैं उसी तरह से मुझसे मिले और बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू सो मच। मुझे भी
3: कल
0: अच्छा
3: क्या नेटवर्क प्रॉपर आ नहीं रहता, इसलिए मैं प्रोग्राम नहीं सुन पाया।
0: अच्छा,
3: आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, सब नए गाने का प्रोग्राम चल रहा है, और कल तो मेरा पसंद का प्रोग्राम चल रहा था, ऑल्ड इज गोल्ड।
0: जी बिल्कुल, ऑल्ड इज गोल्ड था।
3: मैंने मैसेज भी किया था, बाकी क्या वो लास्ट नेटवर्क में हो गया था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, होता है होता है।
3: और अब क्या बताऊँ, अब मैं बनारस से आज शाम को 5 बजे बैठा हूँ, कल

0: 5:30 बजे वापस जोधपुर पहुंचूंगा।
1: अच्छा अच्छा, ओके, चलिए, हैप्पी जर्नी
0: आपका। अपना अकबर खान।
1: थैंक यू सो मच अकबर जी, और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली मुझे। और यहाँ पे हमारी नंदनी माँ लिखती है कि काजल जी की पसंद सुपर हिट लगी है। एस खानम जी लिखती है कि रिश्ते बड़े बड़े बातें करने से नहीं, जबकि छोटी छोटी बातों को समझने से और गहरे होते हैं। ब्यूटीफुल जी, बिल्कुल आपकी बात में दम है, इसलिए तो आप एस खानम है। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि काजल झक्का जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं और दिल खुश कर दिया उन्होंने। बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि काजल जी की पसंद मुझे बहुत ही बहुत अच्छी लगी। और शंकर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं कि अर्जमन सर जी, जी आपका वेलकम है भाई। आप यानी कि पोखरा नेपाल से हैं, लेकिन आज 90 जन न्यू के गाने प्ले हो रहे हैं। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत झक्कास लगा है जी। ओके जी, और इसी बात पर और जुड़ चुकी हैं आरजे सोनी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आरजे सोनी जी आपका भी। और अगला जो डिमांड है वो तीन दोस्तों का है, मंगेश देशमुख जी, मोहन निवारे जी और राजमल हिवराले जी, सभी सुनना चाहते हैं एक दिल रुबा है, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक और फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल कर लेता हूँ। और अभी मार्जी लीजिए सुपर लाजवाब गाना काजल जक्का जी का, दिल खुश हो गया, एकदम मजा आ गया है। और अनिल मेहता लिखते हैं कि अमन सर जी एक दिल रुबा है, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और जितने बार भी सुनो तो बार बार मेरा मन नहीं भरता है। जी बिल्कुल। और नाही जी लिखते हैं कि सुपर डिमांड के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड, धन्यवाद देते हैं इस प्यारे से डिमांड के लिए। मोहन हमारे लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अमन सर जी हमारे गाने को प्ले करने के लिए। गजानंद जी लिखते हैं दोस्त मंगेश दशमुख जी, राजमल हिराल जी और मोहन हमारे जी के पसंद मुझे पसंद आई, धन्यवाद। और शिल्पा बहन जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हमारे आरिफ सिंधी जी का है, और इकरार होना जाए कहीं प्यार होना जा रहे, हो गया है प्यार, दोहरा के होगा।

0: बिल्कुल कहीं प्यार हो ना जाए, वैसे फीडबैक भी आ गया, शामिल कर लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, आरिफ सिंधे जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और ना ही जी लेते हैं, आरिफ सिंधे जी के पसंद मुझे बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इस प्यारे डिमांड के लिए। और अगला जो डिमांड है मेरे पास दिगंबर जी का, दिगंबर जी क्या कहते हैं जरा इनकी सुन ही लेते हैं ना। दिगंबर जी,
2: हेलो अमन सर जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: अच्छा, गुड इवनिंग।
2: तो आज हम 90 से न्यू सुपर सॉन्ग में एक सॉन्ग सबको डेडिकेट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको और फिर हमारे सभी दोस्तों को और भाइयों को। तो मूवी का नाम है इम्तिहान। तो सॉन्ग के कुछ बोल हैं, चाह तो बहुत ना चाह तुझे, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, चाह तो बहुत ना चाह तुझे, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, दिल ही तो है जिस पे आया। ये सॉन्ग सुनना है अमन सर जी आज, तो आज देखते हैं सॉन्ग में कितना दम है।
0: ओके जी, तो सुना दिया, एंजॉय कीजिए, चाह तो बहुत, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल चाह तो बहुत ना चाहेंगे हम। और दत्ता जी लिखते हैं नमस्कार, हम भी जुड़ गए, वेलकम है। और गजानंद जी लिखते हैं चाह तो बहुत वाला गाना शानदार लगा है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि सुपर हिट था जो आप पसंद के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आत्मराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी सभी गाने एक से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं, मजा आ रहा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है आरजे सोनी जी का है, और आरजे सोनी जी हमेशा आती है तो कुछ अलग तरह का गाना लेके आती है। इस बार भी ये गाना इनका अलग ही है, कुछ सुनते हैं।

भाई हम तो यही कहे कि तेरी मर्जी तू जाने, मैं अपनी मर्जी जानूं कि मैं तुझ पे मरता हूँ और बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। वैसे यहाँ पे ये गाना बहुत अच्छा लगा है और दत्ता जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी। गजानंद जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का डिमांड, ओ माई गॉड बहुत प्यारा लगा, थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं आरजे सोनी जी को। और फैज जी लिखते हैं वाओ आरजे सोनी जी योर च्वाइस इज वेरी लवली। इसी बात पर जो अगला जो डिमांड है हमारे ये सुहेल जी का है और सुहेल जी सुनना चाहते हैं जुबा जुबा पे होगी, बिल्कुल जुबा जुबा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी, होगी ना क्योंकि दोनों तरफ से है ना।

और फिर न अभी नेटवर्क डिस्टर्ब किया था। आरजे सोनी जी लिखते हैं कि सभी सभी सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच मेरे गाने को पसंद करने के लिए और फिर

0: प्रेम कहानी और एक दम होगी जी, वैसे फीडबैक भी आया हुआ है जी। और शंकर गुप्ता जी क्या कहते हैं सुनते हैं जी।
1: हेलो अमन सर जी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद आता है।
0: पिछले
1: कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ और मैंने एक फरमाइश भी भेजी है पहली बार। पता नहीं वो आप कब प्ले करेंगे, लेकिन काफी लाजवाब आपका ये प्रोग्राम रहता है।
0: थैंक यू सो मच।
1: सुनकर दिल एकदम खुश हो जाता है।
0: भाई शंकर गुप्ता जी, आपकी जो डिमांड है वो हमारे ख्याल से रोज रोज आंखों चले ये गाना है। ये अगर हाँ, ये शायद अगर मतलब 1986 का है, ये 1986 का है तो आज यानी कि प्ले नहीं होगा। आज 1990 से गाने प्ले होते हैं। ओके, तो 1990 के बाद के गाने भेजिए, मैं जरूर शामिल करूंगा। और यो आपने 1986 का गाना भेजा हुआ है, इसके लिए आई एम सॉरी। अब दोबारा भेज दीजिए, मैं आपके कोई और गाने भेजिए, 90 का गाना भेज दीजिए, मैं प्ले कर दूंगा। और ये पहली बार जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लेकिन ये जो गाना है रोज रोज आंखों तले, ये 1986 का है। ओके, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, और इसे मैं कैंसिल करता हूँ, आप इन दूसरा भेज सकते हैं। ओके, दत्ता जी लिखते हैं कि सुहेल जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि अमन जी आपकी शेर शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। ओके जी, और जाकिर खान जी लिखते हैं कि ओके हाँ, आपका गाना मुझे मेरे पास आ चुका है दूसरा, मैं जब टाइम मिलेगा तो सुना दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। बाबूलाल जी लिखते हैं कि जुबा जुमा पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी अच्छा लगा। कपूर चंद जी लिखते हैं कि शानदार पसंद चल रहा है। और गजानंद जी लिखते हैं जुबा जुबा पे होगी यह लगाना मुझे बहुत पसंद है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हमारे नाम है सुनीता गोप जी, और सुनीता गोप जी लाती है हमेशा गाने चुन चुन के, तो एंजॉय कीजिए ये वाला प्यारा सा गाना, मेरे सोने रब ने कितनी सोनी चीज बनाई है। जी बिल्कुल, एंजॉय कीजिए इस गाने को, सुनीता गोप जी।

दिलीप राम जी, आप मुझे कॉल ना करें प्लीज। अगर आपको मैसेज करना है तो आप रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से मैसेज करें, क्योंकि हम यहाँ पे व्हाट्सएप के कोई भी मैसेज शामिल नहीं करते हैं। जो भी दोस्त अगर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं वो प्लीज रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से मैसेज करें प्लीज। और दिलीप राम जी प्लीज आप मुझे बिल्कुल ना कॉल करें, अगर कॉल कीजिएगा तो मुझे मजबूरी में ब्लॉक करना पड़ेगा आपको।

0: फीडबैक आए हुए मेरे पास बहुत सारे, और दत्ता जी लेते सुनीता गोप जी के पसंद सुपर हिट मजा आ गया है, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, सुनीता गोप जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, और फैज जी क्या कहते हैं?
2: सुनीता गोप जी की पसंद भी एक नंबर, बहुत अच्छा डिमांड किए हैं, बहुत और क्या करें, यहाँ नेटवर्क भी हम लोगों को ही परेशान कर रहा है, प्रोग्राम रुक रुक कर चलने लगता है, बारिश भी हो रहा है, पावर भी कट हो गया है।
0: अच्छा जी,
2: तो गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं सुनीता गोप जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण गोप जी लिखते बहुत ही प्यारा नगमा है, और इस शानदार डिमांड के लिए हम अपनी श्रीमती जी को धन्यवाद देते हैं। ओके जी, और बाबूलाल जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हमारे यानी कि कुन क्या नाम है, बिंदिया जी की है, और बिंदिया जी एंजॉय कीजिए इस प्यारे से डिमांड को, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल धीरे धीरे, और ये लगाना भी लगा धीरे धीरे, मजा आया। और गजानन जी लिखते हैं कि पिंडे जी की पसंद मुझे पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। और ये फैज जी क्या कहते हैं?
1: बिंदिया जी की पसंद भी बहुत खूबसूरत और अनसुने गाने की डिमांड की ये है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। एमडी फैज आलम मोहिउद्दीन नगर से।
0: ओके जी, और यहाँ पे सुनीता गोप जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और संदीप पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो दो दोस्तों की है, यानी कि सुभाष शर्मा जी और एमडी नाजिम जी। सुनना चाहते हैं पूरब से चली पुरवाई के छम छम। और सभी के लिए डेडिकेटेड है गाना।

0: जूठी शहनाई के छमछम पायल बोले, ये फीडबैक भी सुन लेते हैं।
1: एमडी नाजिम जी की पसंद भी एकदम सुपर से ऊपर वाला गाना, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए जी। एमडी फैज आलम मोहुद्दीन नगर,
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे नाजिम जी और सुबह जी दोनों की पसंद बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण को देते हैं सुपर हिट डिमांड के लिए, दोनों दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं सुभाष जी और नाजिम जी की पसंद बहुत ही शानदार, मजा आ गया। नाजिम जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों को भी धन्यवाद। और असलम राणा जी लिखते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, अब आप ही बताइए मैं कहाँ करूँ, आज भी आपका महंगाई वाला गाना है और मैं कोशिश करता हूँ जहाँ भी समय मिलेगा मैं जरूर प्ले करूंगा, कैसा मत है लेकिन मैं प्ले जरूर करूंगा, ये मैं आपसे यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ। ये फीडबैक
2: नजरों से दूर रहते हो, नजरों से दूर रहते हो और दिल पर कब्जा जमाए बैठे हो, नजरों से दूर रहते हो और दिल पर कब्जा जमाए बैठे हो, मिलने तो कभी आते नहीं, मिलने तो कभी आते नहीं और ख्वाबों में समाए बैठे हो, और ख्वाबों में समाए बैठे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमन जी गाना बजा देने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा अच्छा फीडबैक देने के लिए और इतना अच्छा अच्छा सॉन्ग फरमाइश करने के लिए, तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद। पंडित जी हाथ देखे हैं ना रेडियो हॉट स्टार में, भोपाल तो मैं गई नहीं है, नैनीताल में गई नहीं, तो रेडियो हॉट स्टार पर हाथ देखे हैं, थैंक यू दिल से आपको थैंक यू गाना बजा देने के लिए। और आज का प्रोग्राम बोले तो झक्का,
0: यस वही तो मैं कह रहा था, यही आप नहीं बोल पा रही थी। ओके जी, और एक ही बात मैं कहूंगा यहाँ पे, एक लाइन मेरे पास दिख रही है कि खुदा की कसम तुम बहुत खूबसूरत हो, ये लाइन है कि खुदा की कसम तुम बहुत खूबसूरत हो और दुनिया की नजर से नहीं वो खुद की नजर को बचा लो, क्योंकि क्योंकि काजल का एक टीका वो तुम्हारे लिए वो कम है, एक काला टीका अपने गले में लटका लिया करो।

ओके और यहाँ पे अगला जो फीडबैक है किनका है, अच्छा फीडबैक नहीं है, शामिल कर दिया हो। ओके अगला जो गाना है वो मैं प्ले करने वाला हूँ। ये गाना हमारे किनका है, रंजीत कुमार जी का है। रंजीत जी सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: अच्छा इनका ऑडियो भी है।
1: आर्जम सर जी नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: गुड इवनिंग,
0: गुड इवनिंग।
1: आज न्यू स्पेशल प्रोग्राम शो में अजय गाने की फरमाइश है। फिल्म का नाम है प्यार का कर्ज और गाने का बोल है नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले, अरे नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले। एक गीत सबसे पहले आपको डेडिकेट है और आपकी सुंदरता की मूरत को डेडिकेट है और वंशिका जी को भी डेडिकेट है और जितने भी रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले साथी हैं सभी को डेडिकेट है। मैं रंजीत कुमार।

वेलकम बैक। और इसी बात में फीडबैक दिया है गजानंद जी ने, दोस्त रंजीत जी के पसंद मुझे पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी ने, रंजीत जी का पसंद शानदार लगा है। और फैजी देते हैं, वाह रंजीत जी दिल घुमा दिया अपने, मजा आ गया सुन के। और राधा कृष्ण को देते हैं बेहतरीन पसंद के लिए, धन्यवाद देते हैं। और जाकिर जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नैना तेरे नैनो की इसी बात लग रहा, जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो डिमांड है हमारी, किन क्या ज्यादा देखता हूँ। ओके, तो ये है यानी कि शिवम जी का डिमांड, और शिवम जी इंजॉय कीजिए गाने को।

0: वेलकम बैक और फीडबैक लगाते हैं, क्या कहते हैं ये?
1: नैनो में सपना, सपना में सजना, सजने पे दिल आ गया कि सजने पे दिल आ गया।
0: अच्छा, आर्य चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मन जी, आपने मेरा गाना प्ले किया था। और गजानंद जी लिखते हैं कि शिवम जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही प्यारा डिमांड है, मजा आ गया सुन के। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये नगमा है, मजा आ गया सुन के। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे रवि मोहरे जी का, सुनवाते हैं सभी दोस्तों को, सुनवा दिया।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, मैं शामिल करता हूँ। और यहाँ पे रवि मर्जी लिखते हैं कि बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त रवि मर्जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। बाबूलाल जी लिखते हैं कि रवि जी की पसंद बहुत ही शानदार। बाबू और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही लाजवाब डिमांड है, मजा आ गया सुन के इसको। और ओके ओके, और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे तीन दोस्तों का है, सॉरी यानी कि चार दोस्तों का है। असलम, क्या नाम है असलम, यहाँ पे सैयद यूनुस जी, अशोक देशमुख जी और हमारे यानी कि सर्वेश भगत जी और आत्माराम पाटिल जी, ये सभी की एक ही पसंद है। और क्या पसंद है जरा सा सुनते हैं इनका ऑडियो को। सबसे पहले सुनते हैं ऑडियो अशोक देशमुख जी का। अशोक देशमुख जी,
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज का थीम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल। तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है जख्म और गाने का बोल है, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को डेडिकेट करता हूँ। और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी। और इसी गाने में जैसे कि सर्वेश भगत जी।
2: आरजे अमन सर जी, सुसंध्या नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है जख्म और गाने के बोल है गली में आज चांद निकला। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतगंजा हार जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष स्वरूप आनंद शेखर, आनंद प्रकाश, सोनी कुमार, कुमार सुरोज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मूर्त जी, आर जे रत्ना जी, आर जे वंशिका जी, आर जे एम एस परमार जी, और सभी आर जे, आर सभी भाई, आर सभी बहन, और सभी लिसनर्स में शामिल है। सभी को सुना दीजिएगा, जयराम जी के अमन सर।
0: एंजॉय कीजिए सभी दोस्तों।

0: बिल्कुल गली में आज चांद निकला और दिलीप राम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दिल्ली से। और गजानन जी लिखते हैं अशोक देशमुख जी और सरोज भगत जी, आत्माराम पंडित और सभी की पसंद शानदार लगी है। बीतू कुमार लिखते हैं कि सभी दोस्तों का पसंद शानदार। और जाकिर जी लिखते हैं कि यानी तेरी कसम हर रोज महसूस होती है, हर खामोशी वो तेरी ही याद बन जाती है, और काश एक बार फिर मुलाकात हो जाए, दिल की हर दुआ सिर्फ तुझसे ही बुलाती है। ओके, और रवि मार लिखते हैं कि सुपर लाजवाब सॉन्ग। और यहाँ पे ये फिर
1: धन्यवाद हमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख,
0: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी। और राधा कृष्ण को देखते हैं कि चारों दोस्तों का डिमांड लाजवाब, एक नंबर, मजा आ गया। नाहिद जी लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी और अशोक देशमुख जी अमेजिंग पसंद सभी की। बाबूलाल जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिली जुली डिमांड बहुत ही शानदार थी, धन्यवाद देते हैं उनको। इसी बात पे अगला जो डिमांड है हमारे राधा कृष्ण गोप जी का है, सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक, फीडबैक आ चुका है, शामिल करता हूँ।
1: जय अमन सर जी,
0: जी
1: धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, हमारा चार भाई का फरमाइश साहब चला दिए, थैंक यू,
0: वेलकम,
1: धन्यवाद सर।
0: ओके, और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी की भी पसंद मुझे शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अमन जी। ओके, इसी बात का अगला जो जो जो डिमांड है हम सुनवाना चाहेंगे, क्या नाम है इनका, बिट्टू कुमार जी का। बिट्टू कुमार जी एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल मैं बढ़िया, तुम भी बढ़िया। और यहाँ पे बिट्टू जी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और जुड़ चुके हैं हमसे MD यानी के परवेज आलम जी, बहुत बहुत वेलकम है परवेज आलम जी। और दत्ता जी लिखते हैं बिट्टू जी का गाना मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा ये बात है। नाहिद जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है ये बिट्टू जी की और मजा आ रहा है सुन के। आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और अरुण मन्ना जी लिखते हैं कि मैं बढ़िया तू भी बढ़िया वाला गाना भी बढ़िया लग रहा है। गजानंद जी लिखते हैं कि बिट्टू कुमार जी की भी पसंद शानदार लगी है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये गाना मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारा असलम राणा जी का है, सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं, सुनवा दिया सखी।

0: ओके महंगाई डैन खाए जाते, ये भी गाना हम सुना भाई, का ही गाना है। राधा कृष्ण को देते बहुत झकास डिमांड है सुनकर, मजा आ गया सुन के। और नहीं जीते के ये भी फरमाइश, ओ माय गॉड मजा आ गया सुन के। और बिटू जी लिखते की एक गाने का अर्थ बिल्कुल सही बात है अमन जी, अच्छा। और गजानंद जी लिखते नारायण जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। इसके बाद अगला जो डिमांड है वो भी सुनिए, वो भी अच्छा लगेगा आपको। और इस गाने की डिमांड हमारे पास मिसाल अंगद जी ने किया है। मिसाल अंगद जी क्या कहते हैं जरा सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर
0: जी, जी बोलिए।
1: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में एक गीत भेज रहा हूँ।
0: अच्छा।
1: और अमन सर जी आज 90 स्पेशल में मुझे जो हाल ही में आई हुई फिल्म जो रितेश देशमुख, अजय देवगन और अर्शद वारसी पर जो फिल्म आई है धमाल 4,
0: अच्छा।
1: इस फिल्म का गाना मैं सुनना चाहता हूँ। और गाने के बोल है, कैसे बनी रे कैसे बनी तेरे बिना चटनी कैसे बनी। अमन सर जी ये गाना मैं सुनना चाहता हूँ और ये गाना मैं सबसे पहले आपको डेडिकेट करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया गाना है, न्यू वर्जन गाना है और ये गाना बहुत अच्छा है, सुनवाने के लिए भी अच्छा है और बजता भी बहुत अच्छा है। तो ये गाना मैं सुनना चाहता हूँ। फिर आपकी सुंदरता की मूरत, इन दोनों के लिए भी ये गाना मैं आज स्पेशली डेडिकेट करूँगा। फिर हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी, सर्वेश भगत जी, मोहन नेवारी जी, दत्ता कदम जी, आनंद कुलकर्णी जी, अमोल कांबले जी और आरजे वंशिका जी, इन सभी को मैं ये गाना सुनवाना चाहता हूँ। तो अमन सर जी आज पहली बार आपके रेडियो हॉटस्टार पर

0: वेलकम बैक फीडबैक भी आए हुए मेरे पास बहुत सारा। जाकिर जी लिखते हैं कि असलम खान जी का गाना मुझे आज बहुत अच्छा लगा है, अब महंगाई टाइम है जाते हैं। दत्ता जी लिखते हैं कि मिसाल अंकल जी का गाना सुपर हिट लगा है। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि धमाल फोर का गाना बहुत बेहतरीन, मजा आ गया सुन के। और नाई जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और असलम खान लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और हमारे गजाना सुरकार जी लिखते हैं कि नाही जी के पसंद मुझे बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि नाही जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई थी। और यहाँ पे राधा कृष्ण को मिलते हैं कि बेहतरीन गाना के लिए धन्यवाद। और दिल प्राण जी लिखते हैं कि कोई क्या पहचाने जिसका गम वही जाने, सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है। और नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम मेरा फेवरेट सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक सुन लेते हैं
1: जी। नाही जी की भी पसंद खूबसूरत लगा, गाना बहुत अच्छा सुना है उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया उनको इस गाने के लिए। एमडी फैज आलम मोहिद्दीन नगर से।
0: ओके जी, और ये क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं।
2: हेलो अमन सर,
0: बोलिए।
2: मैं मिसाल अंगद और आपने तो आखिर चटनी तो बना ही डाली। तो अमन सर जी, आपने मेरा गाना सुनवाया, आपका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी। और जिस प्रकार कार्यक्रम शुरू हुआ था और जिस प्रकार आपने कार्यक्रम को रूप बदला है और जिस प्रकार गाने आपने चेंज किए हैं, तो अमन सर जी आपके दिमाग को वाकई मैं सलाम करता हूं कि अमन सर जी आपने आज का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन और बहुत सुपर हिट गाने सभी को सुनवाए। मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा अमन सर जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा।
0: धन्यवाद आपका भी,
2: धन्यवाद
0: मिसाल अंकल जी। और अगला जो डिमांड है हमारी वो एस खानम जी का है, और सुनना चाहती है ये मन का शानदार नगमा। इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, ये खुशियाँ और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है। और बिट्टू कमाल लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत ये नगमा है, दिल खुश हो गया है। और नहीं जी लिखते की सुपर अमेजिंग एस कानम जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ और

वेलकम बैक, और फीडबैक भी तेरे पर बहुत सारे आए हुए हैं। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं ये वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और अरुण मन्ना जी लिखते हैं सभी गाने एक से बढ़कर एक है, बहुत अच्छा लग रहा है। एस खानम जी लिखती हैं कि थैंक यू सो मच मेरा सॉन्ग को प्ले करने के लिए, और फीडबैक देने वाले दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अमीना खान जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना चल रहा है, जी बिल्कुल। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये यानी कि प्रियंका जी का डिमांड बहुत ही शानदार लगा है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि नशा ये प्यार का नशा है, एक्सीलेंट सॉन्ग है, जी बिल्कुल। इसी बात पे अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि परवेज आलम जी का है, और परवेज आलम जी इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल। और यहाँ पे गजानन जी लेते हैं पहली बारिश में, और तू शानदार पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। नाजन जी लेते हैं ऑसम सॉन्ग है, और बाबूलाल जी लेते हैं परवेश आलम जी का, अरे परवेश नहीं यानी कि परवेज आलम जी, उनका डिमांड मुझे बहुत ही प्यारी लगी है। और नंदनी मां लिखते हैं कि आज के सभी गाने बहुत अच्छे लगे और प्रोग्राम भी प्यारा लगा है। और शिल्पा बेन लिखती है कि ये पहली बारिश में और तुम बहुत ही बढ़िया गाना जी, इसी बात का अगला जो डिमांड है। अच्छा फीडबैक गया हुआ और दो यहाँ पे किशोर पाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और नाहिद जी लिखती है कि कहा गया जी, हाँ नाहिद जी यहाँ पे लिखती है कि सुपर अमेजिंग सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं परवेज जी को। अरुण मंडल जी का जो गाना है फिल्म दिल है बेताब का सुनना चाहते हैं और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, सुनवा दिया अरुण मंडल जी,

0: जी बिल्कुल, तो प्रेम दीवानी है और रवि मार्जी लिखते कि ये पहली बारिश वाला गाना मुझे अच्छा लगा है और राधा कृष्ण गोपी के शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं और गजानंद जी लिखते हैं कि अरुण मंडल जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है और नाही जी लिखते हैं वाओ सुपर डिमांड, थैंक यू सो मच अरुण जी और बाबूलाल जी लिखते हैं अरुण मंडल जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो किन का है, एमडी5 जी का, सुनते हैं।
1: अस्सलामु अलैकुम भाईजान, तो आज प्रोग्राम है 90NU स्पेशल, इस प्रोग्राम के लिए एक डिमांड है, फिल्म का नाम है चेहरा और गाना है चेहरा अपना, तो इस गाने में शामिल कर रहे हैं सबसे पहले आपको और आपके दिल की धड़कन सुंदरता की नूरत जी और मेरे साथीगण हैं गौरव कुमार, सौरभ कुमार और डॉक्टर PK हीरा जी, साथ में रेडियो हॉट स्टार एंड गाना के सभी सम्मानित साथीगण, तो सभी के लिए सुनवा दीजिए ये सॉन्ग।

आरजे सोनी जी लिखती हैं कि हर पल मेरे होठों पर बस यन तेरा ही फसाना है, लोग चाहे जो भी कहे हमें तो बस यानी कि तुझ पर ही मुस्कुराना है, और कहने वाले कहते हैं रहे इश्क ने दीवाना कर दिया, और उन्हें क्या खबर ये दीवाना पर मेरी जिंदगी का खजाना।

0: वेलकम बैक और फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ। पहला तो ये क्या हुआ कि अच्छा भी पढ़ जी कुछ नहीं आया हुआ है, और यहाँ पे दादा के सबको देते हैं लाजवाब डिमांड, धन्यवाद। और किशन पाल जी देते बहुत ही बेहतरीन पसंद लग रहा है मुझे, और नाही जी देते वाह क्या पसंद है, औसम फरमाइश हमारे फैज जी की। और गजानंद जी लिखते हैं फैज जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना पहला गाना सुनवाने के लिए, और ये इनका फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, मेरे गाने को अपने प्रोग्राम में जगह देने के लिए थैंक यू। एम डी फैज आलम मोहुद्दीन नगर।
0: ओके जी, इसी बात पर अगला जो डिमांड है वह अनिशस सिंधी जी, ये यानी कि सुनना चाहती हैं ये गाना इंटरनेशनल खिलाड़ी का, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए अनिशा सिंधी जी।

वेलकम बैक। और यहाँ पे शिल्पा मैन जी लिखते हैं कि मांग मेरी भरो वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और राधा जी को देते हैं बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद देते हैं। और अमीना खान जी लिखते हैं कि उनके परिवार बहुत ही सैड ये न्यूज है, उनको परिवार वाले को रब यानी सब्र दे। और गजानंद जी लिखते हैं कि मांग मेरी भर वाला शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि खलनायक ये मूवी का बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और तसव्वुर जी जुड़ चुके हैं गंज ढूंढवाड़ा से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी तसव्वुर जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो ये है, क्या नाम है इनका, मैं देखता हूँ, ये संध्या पटेल जी। और संध्या पटेल जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

और ये गाना बहुत लंबा है, करीब यानी कि 14 मिनट का है, इसलिए इतना मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा। सीधे मैं दिलीप राम जी का गाना मैं प्ले करता हूँ। इन्होंने भी यहाँ सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजा हुआ है। दिलवाले का गाना सुनना चाहते हैं, जीता था जिसके लिए एक ऐसी लड़की थी।

और लीडर बोर्ड में देखता हूँ कि आज के कौन विनर बने हुए हैं। विनर बने हुए आज के हम मेरे गजान सलोकार जी। ओके जी, तो मैं आज इन्हीं को कॉल लगा लेता हूँ, मैं लॉटरी नहीं निकालूंगा आज। और एक यानी कि विनर बने हुए थे हमारे कौन साहब, जाकिर खान जी। तो जाकिर खान जी का मैं गाना प्ले करता हूँ, तब तक इसके बाद मैं कॉल लगाऊंगा आज के विनर जी को।

इसी बीच में कॉल लगा लेते हैं, मेरे पास समय कम है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि इतना टाइम हो गया है। ओके तो हमारे गजानन जी, कभी कभी मैं समय पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ ना।

इनका कॉल नहीं लग पा रहा है या मतलब रिसीव नहीं हो पा रहा है, अब कोई भी कुछ भी हो सकता है। काम करता हूँ मैं, लॉटरी निकालता हूँ, अब जिसका नंबर आ जाएगा मैं उन्हीं को कॉल लगा लूंगा, चाहे वो कोई भी हो।

और इस बार मेरे पास नाम सामने आ गया है एक बार फिर से अमीना खान जी का। ओ माय गॉड, कॉल लगाते हैं अमीना खान जी को।

0: अमीना खान जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत बधाई हो, यू आर सो लकी, आज भी आपका लकी ड्रॉ में नाम आया हुआ है, बहुत बधाई हो आपको। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, और कैसी हैं आप?
1: मैं थोड़ी थोड़ी खराब हूँ आज।
0: थोड़ी खराब है,
1: ठीक हूँ।
0: मतलब यानी क्या हुआ?
1: तबीयत तबीयत।
0: अच्छा, तबीयत खराब है, तबीयत आपकी नासाज है, तो आप आराम कीजिए और दवा लीजिए और
1: रेस्ट
0: कीजिए, तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगी, है कि नहीं?
1: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह। तो आज आप जी बिल्कुल, तो आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आज आप अपनी पसंद का कुछ भी सुना दीजिए, मुझे तो पता ही ना मैं जीतूंगी फिर।
0: जी जी, कोई बात नहीं, आज मैं एक वो दीवाना दीवाना में गाना सुना दूं?
1: हाँ जी जी बिल्कुल।
0: फिल्म वो सरार का गाना है जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगेगा।
1: हाँ जी।
0: ओके
1: जी,
0: तो ठीक है, मैं सुनवाता हूँ आपको गाना थोड़ी देर में, इंजॉय कीजिए, बाय
1: जी।
0: ओके, अल्लाह हाफिज़।

वेलकम बैक। और बहुत से फीडबैक हैं, बहुत सारे फीडबैक हैं, लेकिन फीडबैक को शामिल अच्छा कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं कि वो अमेजिंग पसंद है, थैंक यू सो मच चीज करने के लिए। और राजन जी लिखते हैं कि आइकॉनिक सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। और ओ माय गॉड, मुझे खांसी क्यों आ रही है यार। और यहाँ पे लिखते हैं सपोर्ट जी के ये गाना 20 रुपए हिट लगा है, धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये दीवाना वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और अमीना जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमीना जी की पसंद और विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और गजानंद जी लिखते हैं कि मेरा फोन हैंग हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि शानदार पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है और आखिरी डिमांड है वो अच्छा, आखिरी डिमांड तो नहीं कहेंगे, एक और डिमांड लगता है कि मुझे प्ले करना पड़ेगा, यानी शिल्पा बेन जी का गाना मैं पहले प्ले करता हूँ फिर उसके बाद से आता हूँ। तो यानी कि शिल्पा बेन जी एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और यहाँ एस खानम जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग तो था लेकिन बट मैं यही कहूंगी कि कल तक जो मेरे लिए इबादत थी वो अब गुनाह हो गई। ऐसा क्यों जी, क्या हुआ? ओ माय गॉड। लेकिन ये क्या कहती है जरा इनकी सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा गाना लेके आई है। जाहे ये बर्थडे गर्ल है, इनके लिए एक तो छूट है आज के लिए। क्या हुआ जी, आवाज नहीं आ रही इनकी? अच्छा रुके, यहां

0: रश्मि जी है कुछ जरूर यानी कि कहीं होंगी, देखते हैं क्या कहती हैं। जरा एक बार फिर से कोशिश करते हैं इनके ऑडियो को प्ले करने की। बहुत क्लियर में बोलता हूँ मैं इनको।
1: बहुत बहुत धन्यवाद है सर जी आपका, आपने ये गाना प्ले किया और सभी ने जो हमारा बर्थडे विश किया उन सभी को भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और हमने एक गाने की और फरमाइश करी है, अगर पॉसिबल हो तो प्ले कर दीजिएगा। थैंक यू।
0: बिल्कुल प्ले करूंगा क्योंकि ये पसंद और मेरी पसंद है। थैंक यू सो मच। और ये तो जरूर प्ले होगा, हर हाल में प्ले होगा। एंजॉय कीजिए रश्मि जी।

इसी गाने के साथ आप मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। और हाँ, कल आप चाहे तो मुझसे यानी लाइव शो में बातें भी कर सकते हैं, लेकिन वो वही कॉल मुझे करेंगे जो कभी सॉन्ग रिक्वेस्ट से फरमाइश नहीं करते हैं, मतलब उन्हें नहीं आता है, वो भी सीख नहीं पाते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। और कल बॉलीवुड मिक्स मस्ती में यानी मिक्स मस्ती में आप हर तरह के गाने सुन सकते हैं, जैसे कि हिंदी और भोजपुरी दोनों सुन सकते हैं, मिक्स सुन सकते हैं, हर तरह के गाने सुन सकते हैं। इसीलिए अब मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।

0: आजादी हो,
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो सुनो तो सुनो तो
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से।

0: सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।
1: जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय देखो जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने, और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, और अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र भर

0: हम हैं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।